0: से कर्मचार प्रणाली की कुशलता में अपनी लगे मल्लिकरण करसिलो ढुसी पड़े दाना प्राल खुआ पशु पक्षी एक पटक में धीरे दाना न खुआ दाना भंडारण कर सुखा ठाव में उष्ण हवा खेलने भूमि माथि उठाई मात्र पशु पक्षी एक पटक में धीरे दाना न खुआ
1: पशु स्वास्थ्य लगातार संक्रमक रोग फैलन सकने हुआ रोकथाम का पशु चिकित्सा व पशु स्वास्थ्य प्रणाली को सलाह में खोप को प्रयोग
0: नेपाल सरकार पशु सेवा विभाग संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन एफपीओ तथा अकुरा सीआईएन द्वारा जनहित का लागि जारी सन्देश आजकल बाल विवाह को कुरा हुँदा धेरै

कार्यक्रम होते और वे कार्यक्रम का लगी स्वयं से शिक्षित था। ऐश्वर्य बाई प्रिंस कला की भारतीय टीम पर 1,20,000 प्रतिनिधि सहित राज्य सरकार लागू औसत से बढ़िया चालना प्रोग्राम बढ़ियालय जिला में ठाकुर द्वारा महा बढ़िया डिजिटल मिला रहा राष्ट्रीय सेवा दल की प्रतिनिधि सेवा आयुक्त

पानी हासिल उन्होंने समग्र तालीम देने और तालीम प्राप्त व्यक्ति और उन्हें स्वयं सेवक के रूप में राष्ट्र सेवा में परिचालन करने सकती व्यवस्था करने को संशोधित विधेयक में राष्ट्रीय सेवा दल का तालीम बहाल वाला सैनिक अधिकारी में बनाने व्यवस्था करने को प्रशिक्षित होने पर नेपाली सेनाका सेनाको भूमिका रहनेछ। सरकार स्वयंसेवक परिचालन गरेपछि यसको जानकारी संघीय संसदमा उनी सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा

0: देता कुछ खाएगा और सब कुछ दिखावा से मिल जाता
1: दिखावा और उनकी भी वो पत्र साझी का चिंता कर जाए
2: Thank you.

0: वहाँ आयरन का संख्या भी सुखाई सौ 28 लाख से परिवार
1: रेडियो गुजरात के लिए बताया संगीत नजरानी संदेश।

सभा सहमा पाँच बजे कौशल बुलेटिन में स्वागत बाहिं पिंड चौतरी सुधार गति से 11 गति समय प्रदेश को विभिन्न ठाव में पानी परसे संभावना रहना पशु उच्च सतर्कता अपनाए नागरिक अर्जुन की बात मंत्रालय सार्वजनिक सूचना जारी करते संभावित जोखिम ध्यान में लेकर आवश्यक सावधानी और पूर्व तैयारी अपनाए अर्जी समेट कर रखो। नेपाल मौसम विभाग मौसम विज्ञान तथा मौसम विज्ञान विभाग अनुसार

वर्गीकरण करें तत्काल जागृति रवैये को भरा तत्काल वर्गीकरण पुलिस

0: के चार के बारे में जानकारी कही थी और आज अच्छे लाल बहादुर छेत्री
1: Thank you.

14 बांसवाड़ी नगर पालिका विज्ञान विषय तथा स्नातक तथा अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना मिलता नगर पालिका के 2083-84 का वार्षिक कार्यक्रम अंतर्गत उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का लागू आवेदन मात्र हो बांसवाड़ी नगर पालिका थाई ठेगा मिलक आर्थिक रूप में विपन्न तथा चिंता विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना नगर पालिका चले तथा नगर पालिका एवं पांचवती सूचना जारी कर दी छात्रवृत्ति

0: Paita.
1: किसेरा निकी पुरुष भोजन है हमने नेपाल सरकार ले पर 20 वर्ष का इस ऐसी मात्रा में एक अनुभव है को जो युवा सोचे न सोचे न सोचे न ये तो निर्णय लिए को किति में आसमा जो 20 वर्ष को समय में केतन मापनी किति मापनी चारी रूप में परिपक्व कैसा भी कौन सा जैसे वह किति जरा गर्भ रहने को अब हमें गर्भ रहने महिला पर

0: सर, आप मैट्रिक की सीखने के बाद उसका माध्यम चाहती आप वर्ग में आपका पास होगा और राष्ट्रपति नाम सप्ताह इंडिया इटालियन धान का कार्य पर सारी तो इंडियन मीडिया और माइंड मिल राइस मिल सारा मशीन हार्वेस्टर साफ वाटर लगाए पशुपन से प्रधान अपना प्लेट मशीन खरीदा का संसद खेती किसान करना सब मेरे समान उपलब्ध था उसे हर बीजा सब मेरे कृषि का मशीन थे इसे छुटना पड़ा खबर कल से खबर रात अपने पर आई था आज कृषि संबंधी कोनो सम्मान की नसाती एक चार की तरह से सांसद पांच बजे मारा पशुपति नाम सप्लाई
1: धन्यवाद अठारहवे पांच अस्सी पच्चीस शून्य चौदह अठारहवे दुई चौबीस शून्य छब्बीस अस्सी
0: नवजीवन सरकारी संस्था का पक्ष ग्राम फसलों में समस्या मात्र जानकारी कराई थी
2: मानव बीज विज्ञान युद्ध को अभियान रोकथाम में समाधान रोजगारी पढ़ाई और कमाई को लोभ दिखाए मानसलाई बीज विज्ञान और प्रसार प्रसार करने घटनाहरू दिन दिनै बढ्दैछन् सरकार यात्रा और कामकाज गर्दै जाएको हुन्छ भने विश्वसनीय र आधिकारिक जानकारीको मात्रै

0: শুনি বাড়ির পাশে ঝাড়গ্রামের জলবায়ু কূটনীতিতে উচ্চ প্রাথমিকতা রাজনৈতিক হোক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রবক্তা ছাত্রী গামছা মন্ত্রণালয়ে হালে জলবায়ু কূটনীতি সমাজ গঠন করেছে সা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পক্ষে রাখিপাছি জলবায়ু কূটনীতি তথা কামের থপ প্রভাবকারী বাউন্ন সবের পুরে ঠানিয়েকো উনি বাধায় প্রধানমন্ত্রী সাহা অসোজ দর্শকে সদস্যকে কার্যক্রম সা मौसम विज्ञान विभाग ने हमको शुक्रवार देखी कई दिन समय नेपाल का कतिपय स्थान में भारी देखी धीरे भारी विभिन्न स्थान में अति भारी वर्षा हो सकने भाई सतर्क तापन होने आग्रह कर आज सांस जारी मौसम संबंधी बुलेटिन में विभाग ने उच्च हिमालय क्षेत्र रेड जोन राखे तत्काल प्रतिकारी आवश्यक पड़ने स्थान रेड जोन और सतर्क रहने पड़ने स्थान ऑरेंज स्थान में वर्गीकरण कर मौसम विभाग ने बंगाल को खाड़ी में विकास भैर एवं मौसमी प्रणाली को असर नेपालसम्म आउने उक्त प्रणाली पश्चिमी वायुमंडलीय प्रणाली से भविष्य में चर्क असर होने सकने चेतावनी दिने आएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले पछिल्लो मौसम सम्बन्धी बुलेटिन जारी हुनुभन्दा ठीक अघि मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी चर्चामा रहेको उक्त मौसमी प्रणालीको पछिल्लो अवस्थाबारे सोधेका छौ।
1: सोसियल मिडियामा आएको जस्तो हाई टेम्परेचरको चाहिँ इन्टेन्सिटी
0: Let's just

0: रहेको जुम्ला का अन्यहरूले बताएका छन्। कृष्ण बाबु उपाध्याय बीबीसी जुम्ला।
1: श्रीलंका को उच्च अदालत ने सन् 2019 को स्थित संघ बन हमला को योजना

वैश्विक नेपाल डट ओआरजीमा जाकर आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल

0: एकमत स्वस्थ संतान हो। गर्भावस्था और स्तनपान नाम का खाना का संतान नियमित उपमान करें, कैल्शियम खाया जाए, स्वस्थता एक सुरक्षित परिवार।
1: रेडियो के बाद आपके फिल्म द्वारा संगीत मजाने की संदेश
2: कौशल्य अस्पताल प्रणाली बढ़िया गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हम ऐक्यबद्धता यहाँ कोई स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पड़े में कौशल्य अस्पताल बासकड़ी में संपर्क कर अनुरोध करद
0: अस्पताल प्रदान करने सेवा
2: चौबीस घंटा डॉक्टर को प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार सेवा उपलब्ध
0: प्रत्येक दिन बिहान 8 बजे देखि साझा 6 बजे विशेषज्ञ चिकित्सा डॉक्टर द्वारा एक छाती कलेजो नशा मुटु चेक जाँच गरिन्छ।
2: प्रत्येक दिन नशा तथा न्युरो सर्जरी नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा चेक जाँच गरिन्छ।
0: प्यारालाइसिस भई मुख बागिने नसा च्यापिएर हात खुट्टा नचल्ने बिरामीहरूका लागि फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्सर थेरापीको विधिबाट उपचार गरिन्छ।
2: नसा च्यापिएका बिरामीहरूको बिना अपरेसन फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्सर थेरापीबाट सफल उपचार गरिन्छ।
0: बिरामीहरूको सुविधाको लागि 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। असहाय नागरिक, एकल महिला, अनाथ बाल बालिका, अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई औषधि बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवामा 10% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। कौशल्य अस्पताल प्रणाली शाखा बाँसवाडी 5 बाँसवाडी।